दुर्गा भवानी का मूर्ति स्थापना के घर सामूहिक पूजा पाठ करना चरण बहुत ही बेटा मटरिया गाँव के बुद्धिजीवी तथा थारू
प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सरकारले स्रोत बिगाउन शीर्षकमा आन्तरिक राजस्व परिचालन गर्न 1.72 अर्ब नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने 10.24 अर्ब संघीय मैत्री बाँडफाँडबाट 7 करोड नेपाल सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान 9.6 करोड 33 लाख

0: के डॉक्टर साहब जी भी हो नमस्कार आज को जो बात हो रही है वही पैसा वाला नंबर के परीक्षा पर जो कई कार्य सारी वो ही समस्या है मतलब जब रहते हैं कि मात्र उस समय के लिए सफा स्वस्थ स्वर्ण खाना खाने के बढ़िया शुभ रहेगा सर
1: हमारा विशेषता है
0: ये दवाई से सारा प्राइमरी पार्ट है
1: विद्यार्थी
0: मस्त समीक्षा राखी विशेष हामीलाई साथी होला।

0: बिना अनुभव की कमियों समय में ध्यान देने को
1: मध्यान
0: आराम चीज सीधा फल फूल आयुर्वेदिक खाना के बेटी को

0: संस्थामा उज्यालो भविष्य हो जाउँ।
1: रेडियो गुरुबाबा FM द्वारा सामाजिक प्रजाति सन्देश।

संतरी खाना खाई व्यायाम शर्त करी धूमपान वगैरह में से दूर रही तनाव नियंत्रण करी आज निर्णय का नीति पर उतरा जिसका कारण से बाकी स्वस्थ जीवन अपने।

0: समझ सूची के अगला मॉडल को पास करें लगाए का मॉडल को पास हमारे तो सहायता का चीज स्थापना हो नहीं की रखो चार पर वो पहला मॉडल चुन कर भागो को ना समझते समाधान करना या तो एक सेवा हमें व्यवस्थित बनेगा वो संभावित सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण करना उद्देश्य के सहायता का चीज स्थापना का ग्रह चलाएगी का संप्रदाय पूर्व बस पार्क बुरे गांव बाजार जो सरस्वती बस पार्क और प्रलयार बस पार्क सहायता का छह संचालन योजना देगा जिला ट्रैफिक प्राधिकारी प्रत्येक का प्रमुख सचिव दरबार से चार प्रमुख का द्वारा विशेष नाशवारी दुर्घटना न्यूनीकरण करने का संग यातायात संचालन सहज व्यवस्थित बनाए सहायता का छह स्थापना का रूप चंद्र के बाद मार्ग बढ़ते से जिला जिला तथा जिला महिला यात्रियों पर यात्रा का क्रम कम समस्या व समस्या समय में सहायता पक्ष में जानकारी कराई थी वहाँ पर आज कल बात
1: नंबर पर स्थापित समस्या ग्रस्त जिला में डिवीजन बंद कर लें तो क्या आज यहाँ सभी स्थान पर जिन नियंत्रण में लेकिन राधापुर नगर पालिका तीन सखापुर सखापुर स्थित लाल जीवी फोर सामुदायिक गुण में से वो जीतो हमें नियंत्रण में लेकिन करीब सात वर्ष जवान जीतो

0: जिनके खिलवाना बता से खिचड़ी खाओ अपना उसको बिछैना सब देना वो काम देना सर। आप लोग देवी पता कर देवी सीरे माता
1: आपने निर्माण सामग्री का प्रयोग करते जाएंगे हम समुदाय को सिंहमौलिक प्रकृति प्रतिकूल का पहला माटी का प्रयोग करेगा और निपे की परम्परा वैज्ञानिक और सुरक्षा बारे खोज अनुसंधान तथा अभिलेखीकरण कर क्षेत्र ऐसी पुरखा का ध्यान और शीघ्र व पुस्तक में पुराए सहयोग पूर्ण रहेगी उनका प्रभावित है।
0: बैद्यपुरी जिल्लाका निर्मली ठाउँमा प्रान्सुका प्रसिद्धमा खैर पदार्थ चाहिँ प्राथमिक पक्राउ गर्नुभयो। यहाँका प्रहरी खाइडी मोतीपुर र प्रहरी चम्की महम्मदपुर चाहिँ अटक प्रहरी टोली बासरी उपलयाका निर्मली ठाउँमा चाहिँ महाकरण पक्राउ गर्नुभयो। प्रहरी प्रशासन बासरी नगरपालिका छोरी चाहिँ 50 मिली ग्राम प्रान्सुगर सहित स्थानीय 25 वर्षीय दिनेश दुखाल पक्राउ गर्नुभयो। नदिया नगरपालिका 11 कलेजपुर चाहिँ 560 मिलीग्राम पदार्थ सहित बासरी नगरपालिका 8 का पक्राउ और 18 वर्षीय त्रियुष बहादुर थापा 21 वर्षीय सन्देश राणा मगर पक्राउ गर्नुभयो। अझै एक नगरपालिका

0: चौधरी पल्लव पर बाटक खुलेरिया नगर पालिका एघार घर स्कूल से एक ग्राम 320 मिलीग्राम पैरासाइट सल्फेट का प्रेरणा नगर नगर पालिका छ शांति टोलकरी मगर हम प्रहरी नियंत्रण निर्वाह अपराध प्रभाग पति जांच अनुसंधान कृतिगत केन्द्र प्राधिकारी प्रत्याग प्रहरी नायक परिचित तथा सूचना अधिकारी रमेश बोहरा जानकारी
1: राजापुर नगरपालिका में बाल अधिकार संरक्षण तथा बाल मृत्यु विद्यालय

0: und sagen, da wird ein Geheiliger Geist eine Tat auf den Boden, während der Mann zum Segen war.
1: Die Pakistan Bibles of the Cup also deal with him at the Italian Queen in the Queen of Home of the Great Period for that beginning to turn which is of a way, that can you matter. But I think that I'm going to have a person of a foot sitting for it, who are very positive, more into a common connector matter, starting there, but also at the विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रमुख प्रसाद देश पर भारत से स्थानीय संगठन का योजना बने की जरूरत पड़ती है कई कुछ महीने है शहर में बादल को देखने के लिए सुरक्षित रहा और जिक्रती उपमहानगर स्थानीय संगठन का योजना बन की जरूरत नेपाल का चुनाव प्रमुख प्रसाद देश पर पड़ेगा यह बात

घटना विभाग सदस्य गोदानमा उपस्थित घटिया घटना रेली अस्पतालका लैस के स्वीकृत सरकार ग्राम आर्थिक वर्ष 2083-84 में करीब 67 करोड़

0: संगठन का प्राथमिक संगठन गौरी संघ संगठन समेत उमय पिंड के विद्यालयों
1: Thank you.

0: 邪魔になったり、それでいいホースを持つまでと、今の子を持たないように、上品なホースがあって、今の子を持つように、これに入っていいなホースって言っていない。
1: あれよ、あれよ、あれよ、それしたいことは考えよ。
2: Judíssimo Isaac, essa vez tu vai curtir, foi que cresce aí, professor, vindo aqui se encargar, e de barriga, e de visão da lua, isso aqui, professor.
1: Torisa, mas o que tem local por aí, o Natal no Morambi, que é o local, que é o Sikim, para que ele queira o Tana, Asna, nós em casa, dormindo, que é o Cobil, lá do Cobil, nós no Cobil.
2: पशु पक्षी को औषधि कुखुरा पालन व्यवसाय करने का लगी कुखुरा का बच्चा कुखुरा को दाना गाय भैंसी को दाना रासायनिक मल में यूरिया डीएपी पोटास जैविक मल लगाया था किसान चाहिए गुणस्तरीय संपूर्ण बीउ बीजन श्रेष्ठ एग्रोभेट में पाइन
1: श्रेष्ठ एग्रोभेट बासवाड़ी किसान चुप बेची दक्षिण पुस्तकालय को पूर्व
2: साथै विजय दशमी शुभ दीपावली र चाड पर्वको अवसरमा हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग इष्टमित्र स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण हिन्दू दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ।

0: உற்சாகப்படுகிற மொபைல்கள் நகரில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி அன்புலாகி தமிழ் யுத்தமே இம்பார்ட்டன்ட் வளர்ச்சிய முறை அன்புலாகி தமிழ் யுத்தமே இம்பார்ட்டன்ட் வளர்ச்சிய அன்பு காலத்து விஷயத்திலும் மகிழ்ச்சி சக்தியை உற்சாகம் பண்ணி நம்ம பல வருஷம் அதுவா
1: कसैसँग
0: पायो भने त्यो मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले त्यो मुभमेन्ट तपाईँहरूले आउने दिन हाम्रो एउटा नेपाली राज्य अगाडि राख्नु पर्छ भनेर अर्को चाहिँ सुसाइडल थर्ट्सहरूलाई टाइम चाहिन्छ
1: नैतिकता निष्ठा र इमान्दारका पहिलो सत्र कार्यक्रम सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री राजेन्द्र शाहले बताउनु भएको छ। विश्वभरमा विविधता बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि बहुभाषी गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल भएको छ। गृहमन्त्री सुदन गुरुङ बिम्स्टेकको बैठकमा सहभागी हुन भारत प्रस्थान गर्नु भएको छ। त्रिशुली नदीको घटनाका कारण भाषिएको त्रिशुली राजमार्ग अन्तर्गतको गलौटी खण्डमा थप लगाउन पर्नुपर्ने भन्दै आज रातिका लागि सवारी साधनमा रोक लगाइएको छ। र पाकिस्तानले श्रीलङ्कालाई जसको टी ट्वेन्टी अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा सेवाले पराजित गर्दै एक खेल अगाडि नै तीन खेलको श्रृङ्खला जितेको छ। नमस्कारलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी रवि भित्तालाई धन्यवाद। भोलि असोज 27 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेट होला। अहिलेलाई म चाहिँ प्रकाशलाई पनि बिराउँछु। नमस्कार।

0: casa y todo eso. Y no quería comentar más de todo eso. Vamos a morir. Quizá no puede que no se nos lleve.
1: Pero alguien de papá y la vez era un viejo tonto. Hoy hay una otra sin pan y quina, un viejo tonto, un par de darme. Utama el pan y quina, un gran ser que tú se puede ver en la nariz que hoy, alto para que hoy quito. Cuarta de si bien su cuba que hoy, chai motor la que hoy, pan la que hoy, chai de si bien per, que tú hace pan y alaina. Tab aman que pare la leche de un yata de camo y si, tab ocar pase se ampli chai, hoy te vuelta a punto a mano, tab un yo al pan y morca, pero pinta de que ni algo, el hoy, el cara en chai, pero hoy, hoy, alba que no, para los ojos, yo me lo dije a que te la ampli chai, aman quien, tom, dan quinto, tal y si, claro que sabe, hoy, mal es el, Sakudaneta yang uye kalian nak ni ambil kereta sakit itu awak bisa ada tisar lagi nak tisar lagi kita upaya terpaksa balik terpaksa. Naya sakit lagi sini kita pun masih balik lagi nak. Kalau aku lupa naya kiri cai motor lagi kiri cai pamsen lagi kiri. Kita pun masih balik lagi nak. Oh uye tahan waktu tu. Kurang je ambil je suku atau apa. Lagi motor aku tu apa kaya. Jadi sini pun tisar balik lagi kiri. Kuna yang kiri sini ambil je usul atau apa lagi jadi kamera suku apa kiri pantat lagi kiri. Kaya kamera lagi kiri. Ia awak sini lagi kiri. हमने कुछ इस करके फिर बचाए सके
2: ठीक है सर एकदम परेशान ना चली अब वस्ते की तरफ हमने जैसे लेफ्ट और डाउन अपने मुझे पानी बस क्या है तो फिर भी तो अपने सिखा देने की नाली काट के वहाँ पानी काट दें तो बढ़िया हो गई वो जैसे मुट्ठन भाग के तो पूरा पानी सी थोड़ा के मैंने पूरा पानी थोड़ा देख लूंगा मैंने चला के वो धान पड़ी जब पाक जाएगी तो हमें पास से काट लिया पानी खाली जब वो पानी नहीं था चेहरा में एकदम हो जाता कि फिर सफाई में हम फिर पहला सिर बढ़िया हो जाए तो सब खाया फिर बढ़िया हो जाए इसे तो नहीं एकदम बढ़िया से बात करूँ
0: हाँ सर आप सिखाइए तो आप उसका काम ये जब मैं आप सिखाने तो सही तो तब तक करना हवा बुली हो पाए पर वो हवा बुली के कारण हमें जान सेकर सब जत्ता कर करते सब करना है वो डालना सिखाते बिगड़ी करो ये पहले से क्या निशाना कौन सा ध्यान पहला है ये भी आना तो पहले ध्यान है ना ध्यान हम जिस तरह वाला ठीक है वो सुखी है ना ये भी कब से ध्यान हमारे पास है बात तो कम हो गया था